0: दोस्तों आज कॉलेज का
1: न्यू ईयर एफएम
0: और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ ना कुछ सोच रखा है लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।